0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Dil se jo nikalti hai, dilo tak jo jati hai, malumat ko jagati hai, duniya ka haal batati hai. ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है. ये आवाज़ है जो अमन की है. ये वो पैगाम है जो अमन है. रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम.

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज़ है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल दे अवेलाजी सुनत अमल दे
1: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली हो ढेर गर्जिदली कड़ीदली हो
0: नो बिल्कुल मायूस के गई माँ अल शिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े औ द हकीम मौलाना नूरुल हुदा साहब ना पल इलाज तरला सकवले शे
1: औ द नूरु मालूमात दे पारा पदग नंबर कॉल कवले शे
0: 0319 55 23 404

0: मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया। हमारे साथ
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल दे अवेलाजी सुनत अमल दे
1: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
0: नो बिल्कुल मायूस के गई मां मायूस के गई मां अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े औद हकीम मौलाना नुरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
1: औद नुरु मालूमातो दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
0: 0319 55 23 404
2: इल्म आगाही तंजो मजा और खुशहाली इस्तेहकाम का हसीन संगम आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांक 88.4 टांक

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91.8 Radio Pegam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. आप तीनों स्टेशन पर एक साथ केसन की आवाज, जो कि आवाज है खूबसूरती की, जो आवाज है सेहत की, और जो आवाज है शिफा की। जी जनाब, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और हमारा आपका साथ होता है पूरे एक घंटे का, यानी कि केसन का टी टाइम। और ये सिर्फ केसन का टी टाइम नहीं है बल्कि तीनों इलाकों में, तीन बड़े शहरों में, तीन बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मुझे सुना जा रहा है, तो जनाब ये वक्त होता है चाय का। तो जनाब चाय का खूबसूरत वक्त और उसके साथ साथ हमने केसन का ये खूबसूरत मजलिस, केसन की बज्म सजाई आप लोगों के साथ की जनाब चाय के मजे के साथ, चाय की चुस्की के साथ, चाय के कप के साथ, जो है आपके कानों में भी एक मीठी सी आवाज, एक प्यारी सी आवाज, एक हुस्न की आवाज, खूबसूरती की आवाज और सेहत की आवाज गूंजती रहे। और चाय की चुस्कियों के साथ, चाय की सिप के साथ आप हमारे प्रोग्राम का मजा भी यूं ही लेते रहे। तो जनाब कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि ना बिल्कुल मेरे तमाम जो आने वाले तमाम कजिन बॉस, अंकल, नानी, चाचन, चाची, चाचन, चाची, जी, मामा, मामी, दादा, दादी, नाना, नाना, आपको सभी सुनने वाले, जिनको जना मुझे सुनने वाले सिर्फ बच्चे नहीं है, नौजवान लड़के भी, लड़कियां भी, और अंकल और आंटीज भी। तो जना तमाम सुनने वालों को ढेर सारा वेलकम टू केसन टी टाइम शो।

0: पूछना, डेरा इस्माइल खान और साथ में पाठपुर के लोग तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन टांग के लोगों ने अभी अभी अभी जो है मुझे जानना शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर मुश्किल से लोगों को अभी मेरा नाम भी याद नहीं हो रहा है क्योंकि इतना लंबा जोड़ा सा नाम है, खलील ताबेश और अमान। वैसे लोग मुझे KTA बोलते हैं, ठीक है जनाब, और सिंपल सा KTA खलील ताबेश अमान। तो भाई टांग वालों परेशान आप लोगों ने नहीं होना अगर आप लोगों को मेरा नाम याद नहीं हो रहा, तो भाई डोंट वरी जनाब, घबराना तो बिल्कुल है नहीं जनाब। अगर घबरा गए तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता है, तो परेशान भी नहीं होना, टेंशन भी नहीं। और जल्दी से मेरा नाम याद कर लेना है क्योंकि उसके बाद फिर आपने मेरी कंपनी के प्रोडक्ट से नाम याद कर रहे हैं, और इतने ढेर सारे प्रोडक्ट हैं जनाब, 30-32 प्रोडक्ट हैं, और जब आपको मेरा नाम ही याद नहीं हो रहा तो फिर प्रोडक्ट कैसे याद होंगे। लेकिन प्रोडक्ट के नाम बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही प्यारे प्यारे से नाम है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि हमारी प्रोडक्ट है गो पिम्पल, गो गो गो पिम्पल है जी, गो पिम्पल। पिम्पल कहते हैं जनाब एक्नी को, दानों को कहते हैं, और गो कहते हैं दफा हो जाओ, चले जाओ, है जी। तो जनाब गो पिम्पल एक प्यारा सा नाम है हमारा, और इसको याद करते ही आपकी जुबान के ऊपर जैसे ये प्रोडक्ट आती है गो पिम्पल, तो आपको लगता है कि यार ये कोई दानों की प्रोडक्ट है। तो बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, केसन की जो गो पिम्पल प्रोडक्ट है इसके अंदर हमारा ऑयल नहीं होता, एंटी एक्नी हमारा सोप है और हमारा फेस वॉश मौजूद है। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और गर्मियों में तो अपने पास जरूर रखिए, जरूर रखिए, क्योंकि जनाब गर्मी के अंदर जो फंगस होता है, फंगस मियां जो होते हैं, वो क्या अपने बच्चे पैदा करता है आपके चेहरे के ऊपर। हाँ जी, आपके बच्चे आपके चेहरे के ऊपर, आपके जो पोर्स है उनके अंदर अंडे देती है ये किस्म का जरासीम, जिसको हम कहते हैं फंजाई, है जनाब, जो फंगस होता है जनाब, बहुत ही खतरनाक होता है, और ये गर्मियों में बहुत खतरनाक हो जाता है जब आपके चेहरे के ऊपर पसीना आता है और पसीने के साथ ऑयल भी निकल रहा होता है, ये बहुत डेंजरस किस्म का जनाब सीन होता है। और इस सीन के अंदर क्या होता है जी जनाब, होता ये है कि जनाब जो फंगस होता है वो भरपूर तरीके से जनाब इन्फेक्शियस कर देते हैं आपकी स्किन को, और यही वजह है कि गर्मी के अंदर आपको बहुत सारे दाने निकलते हैं यार, है जनाब, दाने निकलते हैं क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड जो होता है वो सेबम को बहुत तेजी के साथ पैदा कर रहा होता है। यही वजह होती है कि जनाब आपके चेहरे के ऊपर पसीना भी बहुत आता है और साथ में ऑयल भी ज्यादा निकलता है। तो जब ऑयल ज्यादा निकलता है तो वो पोर्स के अंदर क्लॉग हो जाता है, और जब क्लॉग होता है तो फिर उसके बाद वहां पर पिंपल्स बनते हैं। तो भाई इस सूरत हाल से बचने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, ये जो फंजाई मियां है, ये जो फंगस है सही तरीके से, यानी कि भरपूर तरीके से आपके ऊपर अटैक ना कर पाए, गो पिम्पल को अपने साथ रखिएगा। केसन का गो पिम्पल ब्रांड, जो कि आज क्यों मेरे जहन से बार बार ऑयल निकल रहा है भाई, केसन गो पिम्पल फेस वॉश एंड केसन गो पिंपल सोप, एंटी एक्नी सोप।
1: के शाहे के गुलामों को शाहे
0: जुमा का खूबसूरत दिन है जनाब, प्यारा सा दिन है जुमे का, और जुमा के दिन जनाब आप लोगों ने आज ढेर सारे, आज तो सब भी तैयार बैठे होंगे, है जनाब, किसी के पास से स्मेल नहीं आ रही होगी पसीने की, क्योंकि जनाब अभी अभी जुमा की नमाज जो है पढ़ के आप लोग, खैर अभी तो बहुत सारे 2 घंटे हो गए, लेकिन फिर भी तरोताजा आप हुए होंगे, नहाए होंगे, नए कपड़े पहने होंगे, खुशबू लगाई होगी, और जुमा की तैयारी में केसन का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि जनाब आपको जुमा की सारी तैयारी केसन के अंदर मिलती है अगर आप केसन के यूजर बन गए, ठीक है जनाब। डेरा तो पहाड़पुर वाले हैं, सो है, अगर टांग वालों से मुखातिब हूँ कि जिस दिन आपने केसन कंपनी को पहचान लिया ना, आपकी सारी की तैयारी, सारी की सारी जो जुमा की तैयारी है ना, जुमा नमाज की जो तैयारी है वो केसन करवाएगा भाई। केसन के पास ऐसी ही प्रोडक्ट है, क्योंकि जनाब आपकी सफाई सुथराई के लिए हमारे पास क्लिनजिंग के लिए फेस वॉशेज मौजूद है, गो पिम्पल फेस वॉश है, लवली फेस वॉश है, ग्लूटा फेस वॉश है, चारकोल फेस वॉश है, ठीक है जनाब, ये डिफरेंट किस्म के फेस वॉश मौजूद है। क्लिनजिंग के लिए बहुत जबरदस्त किस्म के हमारे सोप है, जाफरानी सोप है, मिल्की सोप है, राइस सोप है, उपटन सोप है, कुछ ही एसिड सोप है, डिफरेंट किस्म के सोप अवेलेबल है। इसी तरीके से जनाब बालों को साफ करने के लिए जो है आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमारा शैम्पू है, जिसे कहते हैं केसन का शैम्पू, केसन का वन एंड ओनली नरिशिंग शैम्पू, केसन शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने बालों को बिल्कुल ऐसे सिल्की, हाँ जी, ये थोड़ा सा भी पंखा चलेगा ना, थोड़ा सा भी चलेगा तो आपको बाल उड़ते हुए नजर आएंगे। अगर आज आपने केसन शैम्पू से बाल धोए हैं तो आपको लग रहा होगा, हाँ जी, बार बार अपने बालों के अंदर हाथ फेरने को दिल कर रहा होगा, क्योंकि जनाब केसन शैम्पू आपके बालों को इतना ही सिल्की सिल्की स्मूथ बना देता है। जी जनाब, सिर्फ शैम्पू नहीं बल्कि भरपूर तैयारी जुमा की केसन के थ्रू आप कर सकते हैं। पहले तो तमाम सुनने वालों को डेरा पहाड़पुर और टांग में, तमाम सुनने वालों को जुमा के दिन बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक हो।
1: देखे
0: जनाब खुशबुएं ऑयल सब कुछ है केसन के पास जनाब, जुमा नमाज के लिए सारी तैयारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और स्पेशली जब आप जुमा के लिए जाएं तो अकबर परफ्यूम लगा के जाया करें, केसन का अकबर परफ्यूम स्पेशली बनाया गया है मर्दों के लिए, ठीक है जनाब। और केसन का जहरा परफ्यूम जो है जो कि फूलों की खुशबू है जनाब। टांग वालों सुन लो भाई, लड़कियों के लिए अलहदा, जनाना अलहदा परफ्यूम और मर्दाना अलहदा। जनाना जो परफ्यूम होता है उसके अंदर जो खुशबुएं ऐड की जाती हैं वो खुशबुएं होती हैं जनाब फूलों की, फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस होती हैं। और जो मर्दों के लिए जो बनाया जाता है ना परफ्यूम सेंट बनाया जाता है जनाब, वो रोब वाला परफ्यूम होता है, रोब वाली खुशबू होती है। तो ये तो जब आप हमारे सेंट खरीदेंगे, जब आप हमारे परफ्यूम खरीदेंगे अकबर एंड जहरा, आपको पता चलेगा कि यार ये वाकई केसन वाले तो बड़े ज्याने हैं। केसन वालों को तो सब चीजों का पता है यार, हर चीज का इनको पता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस तरीके से बनानी है। औरतों के लिए अलहदा और मर्दों के लिए बिल्कुल अलहदा। तो जनाब अकबर एंड जहरा डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने आज जुमा नमाज अदा की होगी, ये तो खवातीन ने हमारा जहरा परफ्यूम लगाया होगा, खुशबू बहुत जरूरी है, सुन्नत अमल है। और जो खुशबू होती है आप यकीन कीजिए कि वो लोग जिनको डिप्रेशन रहता है ना, जो हर वक्त डॉक्टरों के पास जाते हैं, और हम आपको डॉक्टरों से बचाने के नुस्खे बताते रहते हैं, वैसे गौर से सुना करें हमारी बात जनाब। यानी कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जनाब, बाज़ों का डिप्रेशन में जाते जाते यू टर्न भी ले लेते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लोग होते हैं जो डिप्रेशन में जाने से पहले यू टर्न ले लेते हैं जनाब। और ये जो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, जहनी मरीज बन जाते हैं, तो भाई वो अगर अच्छी खुशबू इस्तेमाल करें ना, मीठी खुशबू, तो उनकी दवाई आधी रह जाएगी। हम आपको ऐसी प्रोडक्ट्स बताते हैं भाई, हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दवाएं आधी रह जाएगी। आप यकीन कीजिए आपकी ऐसा ऐसा से धीरे धीरे से आपकी जान भी दवाइयों से छूट जाएगी। इस कंपनी का मकसद भाई आपके घर से दवाइयों का खात्मा करना है। आपके घर में केसन के प्रोडक्ट मौजूद होंगे तो या तो आप दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, या अगर इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी बहुत इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो डोजेज है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, क्योंकि केसन के प्रोडक्ट इतने जानदार हैं, इतने जबरदस्त हैं कि हम नेचुरल वे पर, बिल्कुल जनाब नेचुरल वे पर आप लोगों को शिफा जैसी नेमत जो कि अल्लाह ताला ने हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर डाली है, बिल्कुल जनाब आपको शिफा मिलती है केसन के हर एक प्रोडक्ट से। तो जनाब अगर आप डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, हर वक्त टेंशन रहती है, तो भाई अकबर या जहरा केसन की दो खुशबुएं हैं, इनका जरूर इस्तेमाल कीजिए। और इसके अंदर इनमें छोटे परफ्यूम भी हमने बनाए हैं, यानी कि आप एज ए टेस्टर इनको अपने पास रख सकते हैं, आप अपने पर्स के अंदर रख सकते हैं, ट्रैवलिंग बैग के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं कहीं तो ट्रैवलिंग के दौरान भी अपने पास आप इसको रख सकते हैं, ठीक है जनाब। सो ये 250 रुपये का हमारा छोटा परफ्यूम है, पेन परफ्यूम जिसको बोलते हैं, 10 ml का होता है। और जो बड़ा परफ्यूम है वो 50 ml का है, और फैमिली पैकिंग के अंदर बड़े पैक के अंदर मौजूद है, जो कि 1500-1600 में आपको मिलता है, इकोनॉमिकल है। और ये वो परफ्यूम है हमारे जनाब कि जो बाजार में आपको 2500-3000 का मिलता है ना, ये बिल्कुल वैसी स्टे वैसा ही 6-7 घंटे खुशबू आपके पास रहेगी, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है, लगाएंगे तो अगले वाले को पता चलेगा कि शहजादे या शहजादी ने कुछ लगाया हुआ है। जनाब तो जुमा की तैयारी मुकम्मल है केसन के साथ, खुशबू के साथ, केसन के ऑयल के साथ, केसन के शैम्पू के साथ, और क्लिंजिंग विद केसन शैम्पू एंड फेस क्लिंजिंग विद केसन फेस वॉश और केसन ब्यूटी सोप्स, हैंड क्राफ्टेड सोप।

चीचना, मुझे कहते हैं खलील, तो आप शवान और आप सुन रहे हैं केसन का टी टाइम। केसन टी टाइम में आप लोगों को ढेर सारा वेलकम। और सामिन किराम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी मालूमात दी हैं या ऐसे हमें सबक दी हैं कि जिनको हम अगर अपने पास रखते हैं तो हमें हमेशा हमें रहनुमाई मिलती है। अब कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब, और उसके अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हें सबसे सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? तो इसके जवाब कुरान पाक खुद देता है जनाब, एक आयत की सूरत में, बहुत ही फेमस किस्म की ये आयत है, खैरुन्नास मैं यनफाउन्नास, खैरुन्नास मैं यनफाउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फायदेमंद हो, जिसका वजूद दूसरों के लिए फायदेमंद हो। नहीं कहा गया पांच वक्त नमाज पढ़ने वाला, नहीं कहा गया जकात देने वाला, नहीं कहा गया सारी रात इबादत करने वाला, बल्कि ये कहा गया है कि सबसे बेहतरीन है वो शख्स, सबसे बेहतरीन है वो लोगों में जिसका वजूद दूसरों के लिए नफा बख्श हो, जिसका वजूद दूसरों को फायदा पहुंचाए, जिसकी वजह से दूसरे की जिंदगी में आसानी पैदा हो। तो समझने की जरूरत है कि भाई अपने वजूद को लेकर, अपनी हस्ती को लेकर अगर आप आज हम अपना मुहासबा करें तो क्या वाकई मेरा वजूद 8 अरब लोग हैं इस दुनिया में, तो कितने लोगों के लिए मेरा वजूद जो है वो नफे का फायदे का सबब बन रहा है? इसे गरीबान में झांकेंगे तो जवाब हमें मिल जाएगा जनाब, ठीक है जनाब। और शायद वो गिनती में लोग होंगे जिनकी वजह से आपके, जिसकी यानी कि आपका वजूद जिनके लिए फायदे का मुझे बना हुआ है, वजह बनी हुई है कि आपकी वजह से 2-4 लोग खुश हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी वजह से 2-4 लोग तो खुश हैं लेकिन आपके वजूद की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से, आपके अखलाक की वजह से 10-12 लोग आपसे नाराज हैं, फिर तो आप इस कैटेगरी में नहीं आते ना कि जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम में सबसे बेहतर कौन है, वो है कि जिसका वजूद दूसरों के लिए फायदेमंद है। तो जरूर सोचिएगा इस आज के पैगाम के ऊपर। और हर दिन मौका है आपको, जिंदगी जब मौका देती है, उस दिन भी मैं आप लोगों से बात कर रहा था, मरने के बाद एक ही ख्वाहिश होगी, काश एक दिन और मिल जाए, ठीक है जनाब, काश एक दिन और मिल जाए तो मैं बहुत सारे सब कुछ सुधार कर कब्र में आ जाऊं। तो ये जो बातें होती हैं ये खुद को झंझोड़ने के लिए होती हैं कि कितना बेहतरी, आज तक अगर खलील के अंदर ये बेहतरी नहीं है तो क्या कल खलील कोशिश करेगा कि कल के दिन को पिछले दिनों से बेहतर करेगा? और इस आयत को देखते हुए क्या मेरा वजूद किसी को फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा? तो भाई देना चाहिए ना, आपका रब कह रहा है मेरे लिए तो सबसे अजीज वो है, मुझे तो सबसे अच्छा वो लगता है जो दूसरों को फायदा पहुंचा रहा है, दूसरों को, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर रहा है।

ये करता है, यानी कि पहले तो बॉडी के ऊपर वो इफेक्ट होती है चीजें, लेकिन ये सेकंड का मामला होता है बहुत तेजी के साथ। आज तक ऐसा कुछ सिस्टम साइंसदानों ने भी नहीं बनाया कि इतने जल्दी जो है ट्रांसमिशन होती है मैसेजेस की, मैसेज इतने जल्दी आपके दिमाग को जाते हैं। जब हम टैबलेट खाते हैं ना, टैबलेट बेसिकली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद बात खत्म है बिल्कुल। थोड़ा सा आपको समझ जाना चाहिए कि दर्द के मामले में होता क्या है। तो बेसिकली जब भी आपके जिस्म में, आपके बॉडी के अंदर पेन होता है ना, तो खास किस्म के प्रोस्टाग्लैंडिंस एक जो है केमिकल्स होते हैं जो पैदा होते हैं, वो जैसे केमिकल पैदा होते हैं तो फौरन दिमाग को मैसेज जाता है, ठीक है जनाब, और आप दर्द को महसूस करने लगते हैं। अब जब आप टैबलेट खाएंगे ना, ठीक है जनाब, जब आप टैबलेट खाते हैं कोई भी टैबलेट, जैसे आपको जिस्म के अंदर दर्द होता है, कोई डिक्लोफेनिक लेते हैं आप, प्रैक्सिकेम लेते हैं, पेनाडॉल लेते हैं, डिस्प्रिन लेते हैं, स्प्रिन वगैरह लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वो जो पैगाम चल रहा होता है ना दर्द का, ये उसको जाके ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है जनाब। वो पैगाम जब आपके दिमाग को नहीं जाता तो आप फील करते हैं कि दर्द खत्म हो गया है। तो बेसिकली दर्द खत्म कैसे होता है आपके जिस्म के अंदर, ऐसे ही होता है कि वो मैसेज आपके जो चल रहे होते हैं ना दर्द के, वो आपके दिमाग को ये गोलियां जाके उसको ना ब्रेक कर देती है बिल्कुल, ठीक है जनाब। यानी कि वो मैसेज आगे नहीं जाते जिसकी वजह से आप फील करते हैं कि भाई आपका दर्द तो खत्म हो गया है, ठीक है जनाब। ये बेसिकली ब्लॉकेज होते हैं, फिर वो जैसे उनका असर खत्म होता है 6-7 घंटे बाद, तो फिर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर आप टैबलेट खाते हैं। जो ऑयल्स होते हैं, अब हमारे ऑयल्स हैं ये वो काम नहीं करते हैं, ठीक है जनाब, ये इस तरीके से काम नहीं कर रहे होते, ये बेसिकली उधर ही एक्टिविटी करता है। ऑयल जो है केसन का, जैसे हम शिफायदार या डिफरेंट किस्म के पेन किलर ऑयल होते हैं, ठीक है जनाब, तो ये वहां पर जाकर जो रीजन होती है, जो वजह होती है ना, किस वजह से दर्द हो रहा है, ठीक है जनाब, किस वजह से दर्द हो रहा है, उस वजह को ढूंढते हुए ये ऑयल उसका जो है उसका इलाज करता है। ये वजह कि हम कहते हैं कि भाई जो लोग जिनको एक दर्द बार बार होता है और बहुत अरसे से होता है, भाई वो टैबलेट कभी भी ना खाएं, वो नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल करें। और ये जो हम बात करते हैं कि टैबलेट का काम जो होता है ना, वो सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को ब्लॉक करना, और जो ऑयल होता है उसका काम होता है कि मतलूबा जगह के ऊपर जज्ब होकर काम कर दिखाना, मैसेज को ब्लॉक करना नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है जनाब। तो केसन शिफाय दर्द जो ऑयल है जनाब, ये बेसिकली शुतुरमुर्ग की चर्बी से बना हुआ है, और इसका काम पट्टों के अंदर जान पैदा करना है, और अक्सर वजूहत में यही होता है कि जब आपके ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है, आपके जिस्म के अंदर कितनी ज्यादा रगें चल रही होती है, उनके अंदर खून होता है, और जहां पर खून का चलना मुहाल हो जाए, मुश्किल हो जाए, सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पा रही होती, तो क्या होता है कि जनाब वहां पर आपको दर्द शुरू हो जाता है, वहां पर प्रॉब्लम शुरू होता है। लेकिन जब आप इस ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, केसन शिफाय दर्द ऑयल को आप इस्तेमाल करेंगे, तो जनाब आपको फौरी तौर पर रिस्पांस मिलेगा। जो गोली होती है ना वो 20-25 मिनट लेती है, क्योंकि जनाब उसने मैदे के अंदर जाना है, फिर उसने खून के अंदर जज्बों का फिर कमाल करना है, और जो ऑयल है जैसे कि हमारा शिफाय दर्द ऑयल है, ये 4-5 मिनट के अंदर आपका जितना भी सीवियर किस्म का दर्द होगा वो खत्म कर देगा। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत अरसे से न्यूरोपैथिक का, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का इलाज कर रहा हूँ, मैं तो उसी को कंटिन्यू रखूंगा, हम भी आपको कहते हैं, हम आपको फोर्स नहीं करते, लेकिन जब आप इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी टैबलेट्स आधी रह जाएंगी, ठीक है जनाब। अगर आप डेली की 4 टैबलेट खा रहे हैं या 3 टैबलेट या 2 टैबलेट खा रहे हैं ना, इस ऑयल को इस्तेमाल करने से आपको इतना रिलीफ मिलेगा, आपके पट्टों की अकड़न इतनी खत्म होगी, ठीक है जनाब, सख्तीपन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो आपकी जो टैबलेट होंगी, चाहे वो एनाल्जेसिक हैं, ठीक है जनाब, चाहे मसल रिलैक्सेंट हैं, या फिर जो है पेन किलर हैं, उनकी मिकदार बहुत कम हो जाएगी। टैबलेट की मिकदार कम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जनाब जब आप तेल लगाते हैं बैरूनी तौर पर तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है जनाब, लेकिन जब आप टैबलेट खाते हैं तो आपके बॉडी के 3 बड़े हिस्से, मैदा, जिगर और गुर्दे, इससे मुतासर होते हैं, ठीक है जनाब। और जो लोग बहुत लंबे अरसे तक खाते हैं भी, उनके लिए तो ये जहर कातिल होते हैं गोलियां, जो कि लंबे अरसे तक खाते हैं, कभी कभी खा ली, सर्द हो गया, कान में दर्द हो गया, ठीक है जनाब, दांत में दर्द हो गया तो और बात है, लेकिन अगर आप जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, पट्टों के दर्द के लिए, गर्दन के दर्द के लिए, अगर आपको ये मामलात बहुत अरसे से हैं और बहुत अरसे से आप ये टैबलेट खा रहे हैं, तो यकीन कीजिए बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इनका एंड होता है, और मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके तीनों बड़े आज़ा जो है वो एक दिन जवाब दे जाते हैं इन्हीं टैबलेट्स की वजह से।

0: जी जनाब, तो शिफाए दर्द आयल जो है आप लोगों के लिए नेमत से कम नहीं है जनाब, और आपके इलाके में मौजूद है। 700 रुपए की ये बोतल है जनाब, ठीक है, और इसको दो दफा आपने इस्तेमाल करना है और फिर आपने आके बताना है कि भाई ये वाकई मैजिक है, ये वाकई जादू है। पहले कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं और उनको मौका दे रहे हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम कलील भाई, क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है। जुमा मुबारक है आपको जनाब।
1: मुबारक हो, जुमातुल मुबारक के जो बाबरकत नहीं है, और इस बाबरकत में जो शुक्र जो आंद है उसकी वजह है जो इंसान इतनी मसरूफियात जाएगा, क्योंकि इस हफ्ते रोजी की बरकत मारे जुमा रखा गया, और जुमा हर हफ्ते ईद रखी गई अल्लाह पाक ने मुसलमानों को, नहीं करना चाहिए, इस गैर हाजिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जुम्मा ना होगा तो इतनी बिजनेस इतनी ईदी कह गए कि भाई अगर ऐसा न कमाया तो ऐसा खासू की तो ऐसा बाल बच्चे की तो खासे नहीं है, रोजी का जामिन माँ तो पिछली अलग था अपनी रोजी का तमाम की तरह और बैद बैर की नहीं देसी था, इस वजह को अगर ये नाम दाता तीस अगर ऐसा ईद सारा हफ्ता बिल्कुल करेंगे क्योंकि हर इंसान में जो है ना इतना आपको ज्यादा जो है ना ईद खुराक और ईद ज्यादा हरकत मिसाल चावल और गजायात जो है ना भरपूर ज्यादा मिसाल और गर्म चीजा असा गुजार के खाते पे असा कच्ची सब्जियां नहीं खाते, सब्जियां छोड़ा की वजह अगर सब्जी खाते पे तो उस बीच मिसाल ज्यादा स्केंट में जाएगी सब्जी की ओर जो ताकत नियमत रखी है सब्जियां बिल्कुल कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, हफ्ते कम अज कम चार सब्जियां पानी सब्जियों उसको छोड़ चावल गोश्त ईस्ट आटे को गर्म मिसाल जोड़ा से मिठे मिठे ज्यादा खाते हैं और रोटी खाना हमारे लिए बना है, हम खाने के लिए बना है, क्योंकि जो है ना खाने को बिल्कुल जो है ना इस तरह खाए कि जो है ना आज सुबह रात को भी खाएंगे, लेकिन हम सुबह को जो है ना दो दिन का खाना खाते हैं, रात को भी दो दिन का, लेकिन एक भी वर्जिश नहीं करते कि 50 कदम कम अज कम वर्जिश करना चाहिए, लेकिन वर्जिश ना करनी चाहिए जैसे, और जितना खाना खाते हैं उसके बाद जो है ना हम कोई काम नहीं करते, सोए पड़े रहते हैं और जो है जिसकी वजह से जो है जोड़ों का दर्द हो जाता है, लेकिन उसके लिए उसका इलाज कैसे हमें ढूंढा है, बेहतरीन इलाज शहर दर्द बिल्कुल जोड़ पट्टू और इसको जो है ना इसको मजबूत करता है, क्योंकि इसको जो है ना छुट्टा होता है सोया इसमें और इसको जरूरी संभाल के हर 10 में से जो एक बंदा मुझे सियात वाला लगता है, वरना तमाम जिसको देख चाहे औरत है चाहे मर्द है तो बिल्कुल टेढ़ा होकर चल रहा है, क्या है यार मेरे पत्थों का मसला है, जो पत्थों का मसला हमने अपने लिए आप खुद मसाइल पैदा किए, तो खाने पे थोड़ा तवज्जो दें, कम खाएं और वर्जिश करें और जो है ना सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें, तो मैं यही कहता कि जो है ना इंसान जो है ना इस बीमारी से निजात ना पाए, इस बीमारी का वह इलाज अगर आप ढूंढे तो ना कोई पत्थर खाएं ना कोई टेबलेट खाएं, क्योंकि टेबलेट जो है ना अंदर जग जाते जिस तरह फरमा रहे थे कि गुर्दों और जो है ना ये जिगर और इसका अंदर जो है ना प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, तो ये ज्यादातर जो ऊपर लगाने से जो है ना फिक्स टारगेट पे जाता है जहाँ जोड़ों को कमजोर जगह उसको मजबूत करता है उसको बराबर करता है उसके लिए, तो ये शफाए दर्द बिल्कुल जो है ना शफाए दर्द जो है ना इसे हवा देता है और दोनों को मजबूत करता है, तो मैं तमाम जितने सुनने वाले ताक वाले हैं फाटपुर वाले हैं डेरा वाले हैं शबीर उस्ताद की तरफ से सबको सलाम हजमत मुबारक हो और इस आयल को जरूर इस्तेमाल करें इनशाला, तो और कैसे उनके तमाम जितने तरह देते हैं आजमा कंट्रोल है वेट कम है जिसका वो गरमा रहे होते खिदमत गुजारों की तमाम खिलाड़ी जो है ना कैशन के कैशन में है, तो बिल्कुल फेस वॉश है और परफ्यूम है, तो तमाम चीजें आपको इंशाल्लाह रिलैक्स करेंगी और इसको इस्तेमाल करो और इसका आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस पर लेकिन इसकी फीडबैक जरूर दें और दूसरों को भी कहो बाकी तमाम बहन बहनों और तमाम को शबीर साथी तरह से अच्छा मदद
0: मिला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैंने आराम से चाय पी ली है, बताओ आपको।

0: शफाए
1: जनाब दर्द से आजादी का नया रास्ता केसन शिफाए दर्द। एक कॉलर हमारे साथ हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम।
2: क्या जनाब
1: जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जनाब नाम बताएंगे अपना, कौन कहाँ से है हमारे साथ?
2: असद फ्रांक।
1: असद, असद अंकल, असद हमारे साथ है। कैसे हैं सर? ठीक है,
2: ठीक ठाक। खैर अच्छा जी,
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। आप ठीक ठाक?
2: मैं आपके जितने सामीन है ना, सामीन उनसे उनसे मेरी आजाना अर्ज है, आजाना के बात जरा मुख्तसर करें, क्योंकि दूसरों लोगों को भी मौका दिया करें। एक और बात करें तो कैसन के बारे में बात करें, आपने ली है, कैसी ली है, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा नहीं हुआ, मिसाल इसके बारे में बात करें। ये इधर उधर की बात है, ये जरा मुनासिब नहीं है, मतलब क्योंकि प्रोग्राम कैसन का है और पता नहीं आदमी कहाँ से कहाँ चल जाता है।
1: सही बात,
2: सब सामीन से अजान अर्ज है कि भाई बात मुख्तसर भी करे और कैसन के बारे में बात करे, बाकी दूसरी कोई बात न करे, नाराज ना हो। जजाकल्लाह।
1: हाँ, नहीं सही कह रहे हैं, सही
2: अर्ज है कि भाई बात मुख्तसर भी करे और कैसन के बारे में बात करे, बाकी दूसरी कोई बात न करे, नाराज ना हो। जजाकल्लाह।
3: सही कह रहे हैं,
2: सही अर्ज है
1: जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा जी,
4: बेहतर सर्कुलेशन, हर
1: बेहतर सर्कुलेशन जनाब, बिल्कुल जी। बात जितने भी सामीन आते हैं वो डेफिनेटली हमारे साथ फीडबैक जरूर शेयर किया करें और करते भी हैं, ठीक है जनाब। लेकिन अगर बात मुख्तसर होगी तो बहुत सारे लोगों को जो है बात करने का और अपनी बात हम तक पहुंचाने का मौका मिल पाएगा। केसन नेचुरल पाकिस्तान हर जगह मौजूद है, तीनों बड़े शहर टांक, डेरस मिल एंड साथ में पहाड़पुर, हर जगह आपको केसन के प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बंदा है भाई जो बहुत अरसे से दर्द का शिकार है, तो केसन शिफा दर्द को एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है जी? ठीक ठाक नान से सो अपना से?
2: ये हाल है शाहजहां
1: शाहजहां हाफिज अबाद कोल, पहले तो सन लहाजी ताहिर होने ने तो सभी उसे इलाके पाए
2: रहने ने बड़े अल्लाह ताला गुजर गए बड़े मेरे नाले। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम सलाम जनाब हाजी ताहिर साहब, क्या हाल है, कितना वदे वे आजकल?
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साहब, ये दे ओके पाया से कोई त्रेसला ते गड़का को संभाल होने ही ताजा प्रोग्राम तो सुनते रह रहे ने घंटी सारे ने कर
1: दे। अच्छा चलो हुन माशाल्लाह त्रेसला खत्म थी गेंद द्वारे?
2: नहीं नहीं आया खड़ोता है, बस संगति है ते ए भी के घंटिया करें दा ने खाजा क्रीम और ते शैंपू ते इस्तेमाल करें दे रहने।
1: अच्छा अच्छा ठीक है,
2: मैं भी मोबाइल थोड़ा फाल गई, मैं घंटी मिला दे, मैं ला ले तो नाल जात का ला के करो का मिले।
1: अच्छा चलो अच्छी गाल, अच्छी गाल है सही। ते तुसा सारे यूजर वे बहुत अरसे कोल ते आज आजकल तुसा तुम्हारी आवाज जेरे पहले सिर पहाड़पुर सुन दा, आजकल पूरे डेरे वाले सुन दे पेन ते पूरे टांक वाले सुन दे पेन, त्रै स्टेशन इकट्ठे हैं सही।
2: बस इंशाल्लाह आका तो थारी कंपनी नाल सादा इने समय जे इति संता रिश्ता बन गिए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अरे भाई थारी कन्या जितने माशाल्लाह अच्छी हैं ते जेरी से अच्छी होए ना तो अपने दिल थिंदा गिनन ते वजन ते ना।
1: अच्छा तोडा वाला केसी ते दिल आदे केसन दी वाला वाला किरशा गिंदे वदे आजकल?
2: क्योंकि आदमा कटोल सिरा साहब इस टाइम थारा टॉप ते आना पिए शैंपू माशाल्लाह, ओ असा ताको अच्छी तरह पता है मेरे उतरा दा दुकान ते हम गिन गया वा तो मैं दीवार उते आवे थारो ना ओई बहु
1: सिर्फ लोग सागू पता है भाई की सारे कितने पिछे इस्तेमाल करें दे वे।
2: नहीं खलील भाई इंशाल्लाह लोग इस्तेमाल करो अल्हम्दुलिल्लाह
1: इस्तेमाल करे। अच्छा लगे बहुत बाज आए सारू हाजी ताहिर भाई।
2: نہیں انشاءاللہ خلیل بھائی آپ سنان دے بعد میری رواج ہو آپ کی انشاءاللہ میں سارا پروگرام سنتا رہا نا لیکن انو ٹائم نہیں لگتا
1: ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی صحیح بہت مہربانی شکریہ
2: نواز ٹھیک ہے سارے سننے والوں کو دعا سلام ٹھیک ہے
1: سارے سننے والوں کو دعا سلام اور حافظ عباس سے حاجی طاہر یہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور اکثر چیزیں بار بار لے کے جاتے ہیں بنا کوئی سائیڈ افیکٹ جو چیز استعمال کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کہتے ہیں
4: ٹیبلٹس کو اب کہہ دو
1: بائے بائے

बेहतर सर्कुलेशन, ये हमारा जनाब मोटो है। और सर्कुलेशन क्या होती है, जब आपके जिस्म के अंदर खून की रवानी बेहतर होती है ना, तो आपके जितने भी मामलात हैं, ठीक है, अगरचे आपको जब आपको चोट लगती है ना, कोई स्पोर्ट्स इंजरी होती है, तो उसमें भी आपका चूंकि मसल डिस्ट्रॉय होता है, डैमेज होता है, रगें मुतासर होती हैं और खून की रवानी जो है मुतासर हो जाती है। जहां पर भी आपके जिस्म के अंदर सर्कुलेशन जो है मुतासर होती है, ब्लड सर्कुलेशन जब खराब होती है, तो तब जाके आपको मसाइल का सामना रहता है। तो ये ऑयल जैसे आप अपने जिस्म के ऊपर लगाते हैं, अंकल असद भी आई थिंक उनको भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 3-4 दिन हो गए, क्या उन्होंने अभी तक हमारा ऑयल बाय नहीं किया है? अगर बाय किया है तो हमें रिजल्ट जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको शदीद किस्म का इतना पुराना आपको कमर का दर्द है ना, मैं आपको बताऊं, मेरे सामने कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कमर का ऐसा दर्द कि आप सही तरीके से कमर को सीधा भी ना कर पाए, इतना क्रॉनिक किस्म का पेन, इतना सिवियर किस्म का पेन अगर आपको है, इतना शदीद किस्म का पेन है, यानी कि कमर के दर्द की वजह से अगर आप ऐसे क्या कहते हैं कुप बना होता है ना जिस बंदे का, ठीक है जनाब, इस तरह भी चल रहे होते हैं ना, तो यकीन कीजिए ये उस हालत में भी करामत है, ठीक है जनाब। इसको इस्तेमाल करें और इसको 4-5 मिनट तक मसाज करें, यहाँ तक इतने तक मसाज करें कि ये मुकम्मल तौर पर आपके जिस्म के अंदर जज्ब हो जाए। आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं और साथ साथ में आप लोगों के मैसेजेस को इंक्लूड करते जाए।

0: सुरू,
1: नई जान नया सुरूर। और एक कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: अब्दुल हादी, क्या हाल है
2: जनाब?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तुसे सुनो, ठीक ठाक ही वे तुसा? जी जी, करा मैं अल्लाह दा प्रोग्राम सुन दे पे वे, या हुने रेडियो ऑन कीता है तुसा? इस्तेमाल करे सो तो सब दवाइयां दे सो के चुन चुन के प्रोडक्ट बनाए तुम्हारे वास्ते, चुन चुन के
2: बड़ी मेहनत करे ने पे।
1: हां जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत पिछले 4-5 सालां को करेंदे वदे हैं, ते एडे सोने सोने शियां बढ़ा के प्रोडक्ट बढ़ा के तुहाकू देंदे पे। मकसद के है के लोगां को, इंसानियत को सारी वजह को, सारी रिसर्च दी वजह को, सारी तहकीक दी वजह को, सारे प्रोडक्ट दी वजह को ना जिंदगी सुकून आवे। हैं जी, कोई फायदा सारे को थी?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ठीक गाल की दीजा।
1: अच्छा, की में मौसम चंगा तुम्हारे पास है? चलो अच्छी गाल है, अगर कोनी तो अच्छी गाल है, अगर है तो तुम भला जरूर करे। तो उनको दिसा है कि भाई केसन दा एक तेल है शिफाए दर्द, ये रहा कि तुम्हारा पुराना को पुराना दर्द खत्म कर सकता है। ठीक है सही?
2: बिल्कुल बिल्कुल, हो या तो दसे सुते कुआ।
1: चलो ठीक है जी, मैं को नहीं दसना, उन्हें को दसे तो ताकि बाजार में के घिने, मैं को दस के करना है तुसा। है जी, प्रोग्राम के बारे में सुनाओ। ठीक है अब्दुल हादी, बहुत मेहरबानी, सही शुक्रिया।
2: लोग बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम।
1: ओके जनाब, थैंक यू सो वेरी मच जनाब। निभाने वाले तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम केटीए, कैसे हो? उर्दू वाली महानूर, मेरी दोस्त टांग से शो सुन रही है, उसको मैं कहूंगी के शो में मैसेज करो और सब सुनने वालों को और मेरी प्यारी सी दोस्त को सलाम। मानूर के पहले भी मैंने आपको बताया टांग से ये ताल्लुक रखती है,
3: ये है
1: और अभी टांग से डेरा में शिफ्ट आई है, केसन की बहुत बड़ी यूजर है।
4: बेहतर सर्कुलेशन, हर पल बेहतर हाल, केसन शफाए दर्द।
1: तो जनाब आई थिंक महानूर भी हमारा शिफाए दर्द लगा चुकी हैं, और मैं आपको यकीन कीजिए कि ये हमारी प्रोडक्ट बार बार बड़े बड़े शहरों में जाती है, अल्लाह को जान देनी है। पिछले हफ्ते की बात है, एक फैमिली ने हमसे बहुत पहले जो है शिफाए दर्द मंगवाया था, और दो बोतलें मंगवाई थी, और अभी वो जब खुद यहाँ पर आए डेरा में, तो वो पिछले हफ्ते की बात है कि वो 4 आयल इकट्ठे लेके गए। ठीक है जनाब, यानी कि 4,000 रुपए को डेरा आए हुए थे फैमिली के साथ, तो कराची से थे। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे घर की अब सुकून बन गया है कि ये होता है तो हमें दादी की परेशानी नहीं होती कि उसे नमाज पढ़ने में मसला होगा, उसे उठने बैठने में मसला होगा। तो भाई इतनी प्यारी प्रोडक्ट है, और आप यकीन कीजिए कि इसके कस्टमर जो हैं इतने पुराने हमारे साथ हैं, इतने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को सुकून के अंदर लेके आ रहे हैं। आज आपकी कॉल को पिक करने का थोड़ा सा मेरे साथ मसला पेश आ रहा है, और अल्लाह करे कि मैं आपकी कॉल पिक कर लूँ। कभी कभी हमारे साथ सिस्टम में कुछ हैंगिंग प्रॉब्लम है या कुछ भी है कि हम आपकी कॉल जो है 7786 से अभी कॉल हमें।
4: जोड़ों का दर्द भूल जा,
1: जोड़ों का दर्द। हाँ जनाब, कहते हैं कि जोड़ों का दर्द जोड़े ही जाने, हमें क्या पता जोड़ों का दर्द कौन सा दर्द होता है। तो ये दूसरे वाले जोड़े हैं भाई जी, ये जो जोड़ होते हैं वो कहते हैं ना जोड़ों का, हम कहते हैं जोड़ों का दर्द कैसे, वो कहते हैं जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जाने, अभी तो हम सिंगल हैं भाई, जब शादीशुदा होंगे तो फिर पता चलेगा। तो ये और जोड़ हैं जो अल्लाह ताला ने आपके बॉडी के अंदर बनाए हुए हैं। तो महानूर जो है सुन रही हैं, महानूर बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे इस्तेमाल भी करती हैं, और शिफाए दर्द भी मेरे ख्याल में उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, अगर किया है तो ज़रूर हमारे साथ जो है फीडबैक शेयर करें। इस वक्त मैं आप लोगों की कॉल लेने की कोशिश में हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कॉल को पिक करना जो है हमारे लिए मसला एक मसला कश्मीर वाली जगह। एनी हाउ, तो फिर कोशिश करेंगे आप लोगों के मैसेजेस को जो है वो पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, और आप लोगों के मैसेजेस जो है उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मुझे कहते हैं खलील ताबे शवान, और ये प्रोग्राम एट टाइम तीन स्टेशन से आप सुन रहे हैं, रेडियो पैगाम पहाड़ पर।
4: अब कह दो अलविदा।
1: जी जनाब, और साथ में आप सुन रहे हैं ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान। ठीक है जनाब, डेरा इस्माइल खान में भी आप हमें सुन रहे हैं और ट्रांस में भी सुन रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनको मौका दे रहे हैं यहाँ पर और देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। हमारी आप ही आ चुकी हैं, सोनिया वान। आप ही कैसी हैं? आप ही ठीक हैं? आप प्रोग्राम सुन रही हैं?
0: प्रोग्राम
1: बहुत
0: अच्छी। जी हाँ सुन रही
1: हैं।
0: दो दिन से कॉल नहीं मिल रही थी।
1: अच्छा जी, कॉल
0: नहीं मिली
1: आज। तीन स्टेशन इकट्ठे हो गए हैं तो जिनके अंदर जितना दम होता है वो कॉल मिला लेते हैं। अब दम की बात आ गई है जी।
0: मैंने भी इस्तेमाल किया है और ठीक ठाक मुझे पाका हुआ है ना। मेरी टांग में दर्द होता था तो मैंने लगाया है, ये तकरीबन एक साल हो गए पहले गई।
1: एक साल हो गया
0: तो ठीक हो गया था सब कुछ। एक मरतबा मोच आई थी तो वो भी लगाया था तो
1: यानी कि दो एक्सपीरियंस आप हमारे इस पेन किलर ऑयल के साथ कर चुके हैं। मोच आई तो वो भी ठीक हो गई। और क्या ऐसे पहले क्या हुआ था आपको?
0: टांग में दर्द अचानक ऐसे होता था ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है। तो
0: शदीद दर्द था।
1: शदीद दर्द, तो फिर इसको ऑयल लगाने से सुकून आ जाता है?
0: बिल्कुल, रात को दर्द जैसे लगा के सोए तो फिर नींद भी अच्छी आती थी और सुकून आ जाता था जिंदगी में।
1: हाँ सुकून आ जाता है बिल्कुल। तो भाई ये प्रोडक्ट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे ये सबसे महंगी चीज है केसन की, ठीक है ना, बाजार में ऑयल 150, 200, 300 के मिलते हैं, लेकिन हमारा 700 रुपए का भी हो गया। अभी हमने इसकी कीमत पहले 850 थी, फिर हमने 750 की, फिर 700 तक लेके आ गए इसको। जितनी इसकी सेल बढ़ती जा रही है हम इसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं ताकि लोगों के ऊपर बर्डन कम हो, लेकिन चूंकि इसके अंदर शुतुरमुर्ग का तेल है वो बहुत महंगा तेल है, हम सस्ता दे नहीं सकते इससे कम रेट के ऊपर ना। लेकिन वो फिर लगाने वाले को समझ आ जाती है कि पैसे वसूल हो गए। अच्छा जी, कल कोई आपको सलाम भी कह रही थी, कोई हमारे 91 की लिसनर थी, तो यानी कि आप भी माशाल्लाह तसल्ली दे रही हैं लिसनर्स को कि भाई शिफाया दर्द इस्तेमाल करें। हैं जी
0: जी बिल्कुल। हाँ जिनको दर्द की तकलीफ है तो इंशाल्लाह
1: स्कूल से
0: सोएंगे भी और
1: चलेंगे, फिर चलना फिरना भी आसान हो गया। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सोनिया वाना भी हमारे साथ मौजूद थी और बता रही हैं जनाब कि दो दफा इस्तेमाल किया है, एक दफा मौज आई थी तो भी इसको इस्तेमाल किया और फिर टांग में अचानक शदीद किस्म का दर्द हो जाता था तो भी इस्तेमाल किया। सलाम खलील अंकल। अच्छा जी अभी, हाँ जनाब मौका देंगे इनको और तीसरी अटेम्प्ट पर हम इनकी कॉल पिक कर पाए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम खलील साहब, कैसे हो?
1: आज आपकी कॉल हमसे पता नहीं क्या कोई दम पड़ रहा था, क्या हो रहा था, कॉल पिक ही नहीं हो रही थी।
3: हाँ पता नहीं कहीं नेटवर्क का इशू होगा मेरे ख्याल।
1: कैसे हैं जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त दुआएं दे रहे हैं आप, ठीक ठाक
1: हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बता रहे हैं भाई ये कंपनी सिर्फ आपको प्यारा बनाने वाले नहीं है, आपका दर्द भी खत्म करने वाली कंपनी है ये।
3: जी बिल्कुल ऐसी बात है
1: जनाब, ये प्रोडक्ट हमारी जो है पहाड़पुर में इस वक्त इतनी ज्यादा बिक रही है, यकीन कीजिए कि इससे पहले कभी इतनी नहीं बिकी, जब इसकी सेल अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग जैसे इसको ज्यादा खरीद रहे हैं तो लोग ज्यादा ज्यादा लोगों को बता रहे हैं।
3: जी बिल्कुल, लोगों को फायदा दे रहे हैं तो लोग भी खरीद रहे हैं, तो लोग आज कल पता है बहुत समझदार है, इतनी ज्यादा महंगाई है।
1: महंगाई है, लोग 100 रुपया भी सोच समझ के लगाते हैं, लेकिन जब 700 रुपया लगाना पड़ जाए तो फिर हमारी कमाल है। मेरे ख्याल में इस प्रोडक्ट की कमाल है कि लोग बखुशी 700 रुपया लगा रहे हैं इस ऑयल के ऊपर खरीदने में।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कंपनी को फायदा दे रहे हैं और आपकी आखिरत में भी फायदा हो रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, शिफा जब लोगों को मिलती है, दर्द का मामला तो बहुत गंभीर होता है, किसी को सुकून मिल जाए तो भाई उसकी दुआएं आज तक जाती हैं अगर देने पे आ जाए तो। हाँ जी
3: जी जी,
1: बहुत शुक्रिया आपका, क्या कहना चाहेंगे?
3: बस तमाम सुनने वालों को दुआ सलाम।
1: अच्छा दुआ सलाम दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक शिफाया दर्द आपके इस्तेमाल में नहीं है, अभी आप और चीजें इस्तेमाल कर चुके हैं?
3: शिफाया दर्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, जो नहीं बोल सकते।
1: हाँ, बिल्कुल नहीं, सही बात है, जो चीज इस्तेमाल की है जैसे कि आप लास्ट वीक बता रहे थे तो जरूरी बात, उसी चीज का फीडबैक ऑनेस्ट रिव्यू होना चाहिए जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
3: बिल्कुल
1: ऐसे ही है जी, बहुत शुक्रिया जनाब,
3: ठीक हो गए तमाम सुनने वालों को।
1: Thank you.

0: मेरा दिन उस्ताद अंसारी नाल गरा में गरा बुढ़ा तू प्रोग्राम को पसंद करने पैन सही बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी बहुत बहुत तुरा शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कॉल ड्रॉप थी के सर ना देते नेकर दूजे कलर कौन ते केर जातु अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम भार
0: किवे हाल है बिरा खैरियत है ठीक ठाक है तबीयत सी अच्छी है हेलो हेलो
1: आवाज नहीं आना पिया मेरा
0: बिल्कुल आना पे सही किवे हाल है कौन साहब ते केर जातु गाल करने पेवे
1: अमीर
0: हुसैन को सत बिस्मिल्लाह सु अपने प्रोग्राम विच
1: बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया
0: बड़ी मेहरबानी

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: तूने तो हम तेरे हैं की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

ओ कैसी, हाँ जी हाँ जी हाँ, मैंने नसी किनन ले नेशो तो रोसे आओ हाँ जी रोचा रोचा शा रोचा जरूर रोचा टेंशन का जोन हाँ कमरगी लर्गी निकलू से वो ये खेने तो आया चीज़ तो तन टेंशन शैम्पू लिफा फांचे डर ले शा आये मना लफ्री दे ओके शा ये फाक के बोल ले शा ओके जी अब दुन को टाइम हरे सुरहात हम शा लो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बेंच चल रहा डी जरूर रोसी हाँ आहर एलिजिबिलिटी शी विदी जब यहाँ रबेता का वक्त कहने से चीज़ दिमिश प्रोडक्ट्स रोज़ सीधे ली थी कहने से मैं इंशाल्लाह तू सब यावी आए शाम इंशाल्लाह ची रोबर ऐसी शक्ति से मरवाले शे कुंदुना और मज़े तेरा खिसले शे इंशाल्लाह।

ओके जी, नेक्स्ट कलर गुरुजी सुख दे रहे सर देखम से। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, नाराज़ी आवाज़ बाहर अल जीता सुख काल बलक प्रेज दमसी लग बैसी में सरफदारा शमी चेसी में इसके हंसुक सभी ऐसी सुख सनवी ऐसी कम कम जैन